0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Time check. Surya FM. Studio time.
4: It's 7 a.m. Bihan ko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु कुंडू

0: ได้หาลูกขัดรังเขาเพราะละเอียดในฝัน
1: चाड पर्व में यूरोपेन्स प्रस्तुत करद रंगीन घर बरसिं उपहार रु 50,000 को यूरोपेन्स को खरीद में पाने लकी ड्रॉ कूपन पाने 3 वर्ष एसी एक टन डबल डोर फ्रिज इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल क्लॉक बम्पर प्राइस में पाने एक जोड़ी को लगी बाली टूर यूरोपेन्स घर मात्र होइन रंगाउन सपना पनि
2: महालेखा परीक्षक को कार्यालय को अनुरोध महालेखा परीक्षक को कार्यालय को स्वीकृत लेखा परीक्षण नीति तथा कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष 2082-83 को आर्थिक कारोबार को लेखा परीक्षण गर्न प्रथम चरण में 44 जिला का संघ प्रदेश र स्थानीय तह का कार्यालय में लेखा परीक्षण टोली खटाइएको छ। लेखा परीक्षण में सघाउ पुग्ने आर्थिक काम कार्यवाही को सूचना तथा जानकारी एवं लेखा परीक्षण टोली को कार्य सम्पादन का सन्दर्भ में कुनै सुझाव तथा गुनासो भएमा कार्यालय को टोल फ्री नम्बर 18-1050-0061 मा रेकर्ड गराउनु हुन वा gunaso@oagnep.gov.np मा इमेल गरिदिनु हुन अनुरोध छ। प्रथम चरणमा लेखा परीक्षण हुने जिल्लाको विवरण कार्यालयको वेबसाइट oag.gov.np मा प्रकाशन गरिएको छ।

0: を106%でください。
1: जलखुम्बु कानून कैंपस को एलएल गुना भर्ना संबंधी एक जलखुम्बु कानून कैंपस में शैक्षिक सत्र 2083/84 को लगी 3 वर्षीय एलएलबी प्रथम वर्ष को भर्ना खुले हुआ कुछ विषय में स्नातक तह उत्तीर्ण कर इच्छुक व्यक्ति निम्नानुसार भर्ना होने जानकारी कराइन भर्ना कार्यक्रम को मिति भर्ना के लिए आवेदन फारम वितरण भदौ 1 गते देखि भदौ 30 गते समय परीक्षा असोज 10 गते नतिजा प्रकाशन असोज 11 गते भर्ना म्याथ असोज 12 गते देखि असोज 25 गते सम्म कक्षा सञ्चालन कार्तिक 10 गते देखि रजिस्ट्रेसन फारम भर्ने म्याथ कार्तिक 30 गते सम्म थप जानकारीका लागि 9851005656 9841828445 र 9842847875 गीता घिमिरे क्याम्पस प्रमुख सोलुखुम्बु कानून क्याम्पस रेड पांडा मैराथन को मिति परिवर्तन संबंधी सूचना गत 2026 अगस्त 26 में आये विनाशकारी बाढ़ी पोहरो ठूल जनधन को क्षतिप्रति हमी गहिरो प्रार्थी छही राष्ट्रीय विपत्ति को गुजीला गंभीरता पूर्वक ध्यान दे मैराथन को मिति सारे हो। इस कठिन परिस्थिति में हम कार्यक्रम प्रति देखा अतीत सहयोग विश्वास को हमी संपूर्ण सहभागी प्रायोजक स्थानीय समुदाय तथा आम दर्शक हृदय देखि धन्यवाद दिन चाहौ। नया मिति में इस मैराथन भव्य और सफलतापूर्वक संपन्न हामीलाई थप सहयोग सल्लाह तथा शुभकामना प्रदान गरिदिनु होला भने हार्दिक आग्रह गर्दछौ। रेड पांडा नेटवर्क संघको सहकार्यमा यस आयोजक समितिले आगामी 2026 सेप्टेम्बर 5 आयोजना गर्ने भनेको रेड पांडा म्याराथनको मिति परिवर्तन गरी 2026 नोभेम्बर 28 आयोजना गर्ने निर्णय गरेको विवरण सम्बन्धी सबैमा जानकारी गराइन्छ।

0: money. सोनु FM 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोनु FM स्टुडियो टाइम
2: TNN
0: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुतुन्न नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु

0: बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह प्रथम वर्ष को भर्ना संबंधी सूचना।
1: विगत 34 वर्ष देखि योग्य दक्ष अनुभवी शिक्षक द्वारा शिक्षण र व्यवस्थापन हुँदै आएको यस सुनखुली बहुमुखी कैंपस में शैक्षिक सत्र 2083-84 में स्नातक तह बीए बीएड र बीबीएस प्रथम वर्ष को भर्ना कार्यक्रम निम्न अनुसार भएको बेला संबोधित विद्यार्थीलाई जानकारी गराइन्छ।
0: भर्ना कार्यक्रम हुने मिति
1: भर्ना म्याच 2083 साल श्रावण 1 गते देखि भाद्र 31 गते सम्म, कक्षा सञ्चालन 2083 साल असोज 1 गते देखि, रजिस्ट्रेशन फारम भने म्याच 2083 साल मंसिर मसान्त सम्म।
0: थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बरहरू 9851010556, 9841653537 र 0385204556। उद्धव कुमार शर्मा क्याम्पस प्रमुख सोलुखुम्बु।

संस्कार और संस्कृति की वो मान्यता सबने दूसरी सके आजकल आत्मीयता एक यूनिटी कार्पेट ने हो विगत तीन दशक देखी को सुनो साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेट को पसारे यति को लोगो हेर्न नबिर्सनु होला यति कार्पेट कार्पेट को शहनशाह।

0: 爱花就你所努 FM 不凡凡
1: सोलू एफएम 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
3: संचय सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
4: 5 PM साढ़े को 5 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुदुकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: टाइम चेक सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: 6 PM साँझको 6 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु
3: Wherever you are, stay connected with the wider world with the BBC World Service. Now streaming on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
4: Where do we begin?
3: With international news you can trust, BBC News.
4: Journeys into the heart of global events.
3: And voices from around the globe.
5: The whole region is in the grip of a severe water crisis. And I am here to find out why.
3: The BBC World Service, right here on Zeno.fm and the Zeno Radio app.

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकताको आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरञ्जनको अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो अभियान
3: Time check. Solu FM. In studio time.
4: It's 7 p.m. Saatko saat baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू